0: पर्यटक की नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्रणाली सृजना चोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशन अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाटी रोग को अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घंटा एम्बुलेंस इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चोक कास्की
0: फोन 061-572-648 572-849
2: खुट्टु खुट्टु पियो या सिप मरमायो
3: अब घर पियो लाइक चीज को हर्डी
4: रिफ्रेशमेंट संगे न्यूट्रिशन दिन आयो मौसम
3: चीज को हर्डी।

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो प्यूना
1: प्यूना लाई ची सो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया ट्विन
1: रिफ्रेशमेंट पार्क न्यूट्रिशन मीट
2: ची सो हॉले।

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियो ना
1: पियो ना लाई ची सो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया ट्विस्ट
1: रिफ्रेशमेंट पास न्यूट्रिशन मीट
2: ची सो हॉले
3: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युन्डई गाडी को शोरूम पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा पोखराको प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट सबैको सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नम्बर 061527426 537526

0: বাটসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउना पिउनालाई चिसो उठाउ हर्लिक्स
2: हर्लिक्स
1: गर्मीमा नयाँ क्विक रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
2: चिसो हर्लिक्स।

0: বাতসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दीवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान महेंद्र पुलादी तोला
1: ए नई छाबा मारे दुकान पोमोना नई पेशोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टस सिक्री हार तान चनाई तो होनी सग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसेनारी बेल्ले छाब पोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मिशा वा चुवल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिकी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग्गा मात्र आनी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुताई रबा ताक रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्ने यामो
1: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान निभिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

0: यही असार 19 गते शुक्रवार पूर्वान्न 11 बजे देखि 20 गते शनिवार मध्याह्न 12 बजे सम्म।
1: सम्पर्क सुन्दर पोखरा फार्मेसी मैनरपुल पोखरा, फोन 061587263 र 553834।

Royal Metal Industries को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल SS Pipes, नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।